0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
1: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
3: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
4: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBO 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोस की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR

0: और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप

मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया

0: घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीयों को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए देश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल यह है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia

0: FM 101.1 MHz പ്രക്ഷേപണം തുടരുന്നു. സമയം 12 മണി. അല്പസമയത്തിനകം ഹിന്ദിയിലും തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും വാർത്തകൾ കേൾക്കാം. ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया. श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा. इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा. राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली. सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है. श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी. इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी. श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे. इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं. हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी. भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया. ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की.
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं. बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था. हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो. एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स. सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न.
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की. डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है. इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया.

0: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളാണ് കേട്ടത്. ആകാശവാണി തൃശൂർ. അടുത്ത പരിപാടി അല്പസമയത്തിനകം തിരുവനന്തപുരം റിലേ.
1: സമയം 5 മണി. ഏ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹെ ആയി ആപ് സുൻതേ ഹെ ഹിന്ദി പാട്ട്. അധ്യാപിക ഹെ അനുപം രശ്മി. ഛാത്രായം ഹെ തന്മയ പിള്ളൈ ഓർ മുസ്കാൻ ജിഷാർ.
2: नमस्ते बच्चों.
3: नमस्ते अध्यापिका जी.
2: कैसे हैं आप लोग?
3: हम अच्छे हैं.
2: चलिए तो आज अब हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं. तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? कौन सी कहानी मैंने पहली कक्षा में पढ़ाई मुस्कान?
3: दो गौरैया.
2: हाँ, कौन सी कहानी पढ़ाई तन्मया जी?
3: दो गौरैया.
2: उसके लेखक का नाम बताइए.
3: भीष्म साहनी.
2: हाँ जी, तो भीष्म साहनी के मैंने आपको शुरू कर दिया था ना. मैंने क्या बताया था पहली कक्षा में कि इस कहानी में पिताजी किसके बारे में बोल रहे हैं? आंगन में कैसे पक्षी हैं, उनके घर में चूहे हैं, उनके घर के चूहे उनको रात में सोने नहीं देते, उनको तंग करते हैं, कभी डिब्बे खुलते हैं, कभी प्याले टूटते हैं. यहाँ तक मैंने आपको बताया था, राइट?
3: हाँ जी.
2: हाँ जी. अब इससे आगे, तो एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है. ओके, 20 चूहे हैं घर के अंदर, तो उसमें से एक चूहा जो अंगीठी, मालूम है बच्चों अंगीठी को, जिसको आप अंग्रेजी में फायर पॉट बोलते हो, उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आग दहकाने का बर्तन या चूल्हा. आमतौर पर ये मिट्टी, लोहे या पीतल की बनी होती है और इसमें कोयला या लकड़ी जलाई जाती है. आजकल तो हमारे घर में गैस है, राइट? पहले जमाने में जब गैस नहीं थी तब इसका इस्तेमाल किया जाता था. किसका? अंगीठी का, जिसको आप अंग्रेजी में फायर पॉट बोलते हो. मगर हिंदी में हम उसको फायर पॉट नहीं बोलते, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? एक आग दहकाने का बर्तन. मेरी जो मम्मी थी ना, हम लोग ने अंगीठी देखी है, अंगीठी के ऊपर हम लोग खाना बनाते थे. मैंने देखी है, आप लोग ने देखा है, आपके यहाँ पर भी होगा ना चूल्हा, जिसको आप मलयालम में अडप बोलते हो ना.

0: आपने देखा होगा लकड़ी से जलाया जाता है।
1: मेरे पुराने घर में था।
0: तो हाँ, चूल्हा थोड़ा अलग होता है, अंगीठी थोड़ी अलग होती है। अंगीठी थोड़ी छोटी होती है, चूल्हा थोड़ा बड़ा होता है। ओके, चूल्हे में क्या करते हैं बच्चों, लकड़ी जलाई जाती है, मगर हम इस पे कोयला जलाते हैं अंगीठी में।
1: हाँ,
0: कोयला, कोयला मतलब मालूम है, कोल, COAL, कोल। उसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है,
1: हाँ
0: ज्योग्राफी में पढ़ा है,
1: हाँ
0: भूगोल की कक्षा में पढ़ा है। हाँ पढ़ा है ना। तो लेखक कहते हैं अंगीठी को एक चूहा है जो क्या करता है, वो अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद वो बूढ़ा है, उसे बहुत सर्दी लगती है। ओके, तो इसका मतलब है कि वो चूहा बूढ़ा हो गया है, उसको सर्दी लगती है, इसलिए वो कहाँ बैठता है, अंगीठी के पीछे। ठीक है, मैं किसके बारे में बहुत बात कर रही, एक चूहा, 20 चूहे हैं घर में पिताजी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। कितने चूहे हैं,
1: 20 चूहे,
0: बीस चूहे, उनमें से एक चूहा कहाँ बैठना पसंद करता है तन्मया?
1: अंगीठी के पीछे,
0: हाँ, अंगीठी के पीछे क्यों बैठना पसंद करता है मुस्कान?
1: क्योंकि वो शायद भूढ़ा है और उसको बहुत सर्दी लगती होगी।
0: हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। एक दूसरा चूहा है, वो क्या करता है, वो बाथरूम की टंकी के ऊपर जाकर बैठता है। टंकी का मतलब समझ में आया तन्मया?
1: हाँ,
0: बोलो।
1: टैंक।
0: यस, टैंक, बाथरूम के ऊपर टंकी लगती है ना, तो एक दूसरा चूहा क्या करता है, वो टैंक के ऊपर चढ़कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे गर्मी लगती है ना। जो टैंक है ना, वो टैंक तो ठंडा है ना, टंकी ठंडी रहती है क्योंकि उसके अंदर पानी है। तो एक दूसरा चूहा वहां जाकर बैठता है, क्यों? क्योंकि उसे गर्मी लगती है। ओके, तो ये सब चूहों के बारे में बता रहे हैं लेखक, कितने फनी तरीके से, है ना, कितने मजेदार तरीके से, हमारे डेली टू डेली लाइफ से रिलेटेड। तो उसे शायद बहुत गर्मी लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है, और वे कभी कभी झांक जाती है। बिल्ली है ना, बिल्ली, बिल्ली का मतलब मालूम है ना,
1: हाँ,
0: अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बिल्ली को?
1: कैट।
0: हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं बिल्ली को कैट, सबको मालूम है ना। ये जो बिल्ली है ना बच्चों, ये क्या बोलते, पिताजी क्या बोलते, ये बिल्ली को भी मेरे घर रहती नहीं है, मगर वो आती है मेरे घर में, कभी कभी झांक कर चली जाती है, मेरे घर को ऑब्जर्व करके चली जाती है। बिल्ली आती होगी आपके घरों में, है ना, शहरों में बिल्लियां बहुत ज्यादा हैं, आती है। हाँ, तो वही लेखक क्या बोल रहे हैं, वो हमारे घर में रहती नहीं है, मगर वो, उसको घर बहुत पसंद है, इसलिए वो कभी कभी झांक जाती है, कभी कभी वो आती है, झांक कर चली जाती है। झांकना मतलब टू पीप, अंग्रेजी में आप जिसको, जो टू पीप बोलते हैं ना, उसको हिंदी में हम झांकना बोलते हैं। कौन झांक कर चली जाती है?
1: बिल्ली।
0: बिल्ली। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। अगर उसका मन होता है तो क्या करती है वो बिल्ली,
1: दूध पी लेती है।
0: हाँ, उसको दूध बहुत पसंद है, घर के अंदर वो दूध पी जाती है, इसलिए आपके घर में बिल्ली है तो ध्यान दीजिएगा। ओके, हमेशा, मगर फ्रिज के अंदर नहीं जा सकती बिल्ली, अगर आपने दूध बर्तन में रखा है किचन के अंदर, तो वो आएगी और दूध पीकर जाएगी। तो कभी अगर मन नहीं हुआ ना बिल्ली को, मन नहीं हुआ उसका कि मैं आज, मेरे को घर के अंदर नहीं जाना है, तो ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं कल फिर आऊंगी, ये बोलकर चली जाती है। देखो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, बिल्ली का मानवीकरण किया है ना। हमको कैसा लग रहा है, ये बिल्ली भी हमारे जैसी ही है। पक्षी भी अगर इस प्रकार से वर्णन किया जाए कि वो मनुष्य के जैसा है, तो उसे कहते हैं मानवीयकरण। ठीक है,
1: ठीक है।
0: आगे चले।
1: हाँ,
0: अच्छा, शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाए कसरत करने लगते हैं, और जैसे ही शाम होती है, मेरे घर के अंदर बहुत सारे वायर हैं, तार हैं, उस तार के ऊपर के चमगादड़ हैं। चमगादड़ मालूम है आप लोग को? बैट, जिसको अंग्रेजी में आप लोग बैट बोलते हैं, उसको हम हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं। वो ना तार के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, ठीक है, मालूम है, वो लोग आकर बहुत बिगाड़ते हैं, वो लोग कृषि को बहुत नुकसान करते हैं, खेती बाड़ी का नुकसान करते हैं, मगर घर में आकर ऐसा नुकसान वगैरह नहीं करते हैं। तो ये सब हमारे घर के आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं, जिसको अपनी डेली लाइफ में हम इनको देखते रहते हैं। तो इसीलिए पिताजी क्या बोलते हैं, जैसे ही शाम होती है, ये चमगादड़ भी आ जाते हैं, ये बैट भी आ जाते हैं, और अपने पर फैला ले, अपने जो उनके जो पंख होते हैं ना, उनके पंख होते हैं, उन पंख को डैने बोलते हैं हिंदी में, वो डैने को स्प्रेड कर लेते हैं और तार के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं। तो जैसे ही वो उल्टे लटक जाते हैं, तो पिताजी क्या समझते हैं कि ये लोग व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसलिए पिताजी बोलते हैं ये लो, अब ये चमगादड़ भी घर में आ गए, पहले से ही तो बिल्ली थी, पहले से ही तो चूहे थे, कौवे थे, मैना थी, गौरैयों का प्रवेश नहीं हुआ है। ओके, तो गौरैया भी धीरे धीरे आएगी, तो अब ये चमगादड़ भी आ गए, और घर में कबूतर भी है ना, कौन है घर में, चमगादड़ भी है, बिल्ली भी है, आम के पेड़ के ऊपर कौन है,
1: पक्षी
0: पक्षी,
1: है।
0: हाँ पक्षी है ना। तो बहुत सारे जीव जंतु लेखक के घर में रहते हैं, मतलब इस कहानी में जो पिताजी हैं उनके घर में रहते हैं। तो दिन भर गुटर गु करते रहते हैं। ये जो कबूतर है ना, आपने कबूतरों की आवाज सुनी है?
1: हाँ, सुनी है।
0: कबूतर को देखा आप लोगों ने, तो कॉमन पक्षी हम हमेशा देखते रहते हैं। हमारे स्कूल में उल्लू आते हैं, देखिएगा जरूर।
1: हाँ, मैंने
0: हाँ
1: देखा
0: देखा
1: है,
0: है आप
1: देखा
0: लोग
1: है,
0: हमारे स्कूल में,
1: छोटा सा उल्लू।
0: छोटे छोटे व्हाइट कलर के, सफेद कलर के उल्लू आते हैं, वो बहुत शुभ

0: माने जाते हैं। उल्लू कौन है मालूम है? हमारे गॉडेस है ना, हमारी देवी है ना, देवी लक्ष्मी के वाहन है उल्लू, तो इसलिए उनका घर में आना शुभ माना जाता है। कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कभी कभी कबूतर आते हैं हमारे स्कूल में भी। अब कबूतर को किसका सिंबल माना जाता है, किसका प्रतीक माना जाता है मालूम है आपको?
1: शांति।
0: हाँ, वेरी गुड, कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। ओके, कि चारों तरफ शांति होनी चाहिए, कहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए कबूतरों को उड़ाया जाता है शांति के प्रतीक के रूप में। सबसे ज्यादा कबूतर आपने एक जगह बहुत फेमस है बॉम्बे में देखा है आपने?
1: बॉम्बे में नहीं गई।
0: नहीं देखा? नहीं देखा है ना। एक जगह है बॉम्बे में, गेटवे इंडिया के पास।
1: हाँ,
0: गेटवे
1: गेटवे।
0: इंडिया के पास आपने कभी कभी तस्वीरों में देखा होगा, है ना, बहुत सारे कबूतर आते हैं वहाँ पर, बच्चे और सब लोग उनको दाना देते रहते हैं।
1: हाँ,
0: तो आपने दिलवाले दुल्हनिया नहीं देखी? DDLJ देखी है?
1: देखिए।
0: तो DDLJ में जब शाहरुख उसके जो फादर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या करते हैं, वो कबूतरों को दाना देते रहते हैं, है ना। तो कबूतरों को दाना खिलाना और कबूतरों को किसी ओकेशन पर उड़ाना हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में शुभ माना जाता है। मगर यहाँ पर उल्टा है इस कहानी में। पिताजी क्या बोल रहे हैं, जब देखो ये कबूतर गुटर गु करते रहते हैं, गुटर गु करते रहते। तो ये गुटर गु क्या है?
1: कबूतर की आवाज,
0: हाँ, गुटर गु क्या है तन्मय?
1: कबूतर की
0: कबूतरों की
1: आवाज।
0: आवाज। पिताजी को कबूतरों की आवाज उतनी अच्छी नहीं लगती। तो इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। ओके, पिताजी क्या बोलते हैं, ये सिर्फ कबूतर नहीं है, अब तो घर में छिपकलियां भी। आप छिपकलियां तो सब जगह रहती।
1: हाँ,
0: क्या इसको छिपकलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग?
1: लिजर्ड।
0: लिजर्ड्स बोलते हो ना, उसी को हिंदी में छिपकली बोलते हैं, मालूम है आप लोग को?
1: मालूम है।
0: हाँ, तो आपने देखी होगी ना, सब जगह रहती है, कॉमन लिजर्ड तो सभी घरों में रहती है। तो इसलिए पिताजी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, चलो ये घर में छिपकलियां भी हैं, कॉकरोच भी हैं, बर्रे, बर्रे को उसको बोलते हैं हम लोग तिलचट्टे, कॉकरोच। ओके, और चींटियों, माय गॉड, चींटियों की तो पूरी आर्मी है मेरे घर में। ओके, फौज, फौज मतलब आर्मी।
1: आर्मी आर्मी।
0: तो बच्चों ये फौज जो है ना, ये उर्दू वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड भी है, मालूम है? इसे हिंदी वर्ड नहीं मालूम है, बताऊं?
1: हाँ,
0: सेना।
1: सेना
0: आप समझ में
1: सेना
0: आया? बोलो सेना,
1: सेना।
0: सेना। हमें उर्दू भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मगर हमें थोड़ी हिंदी भी अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है?
1: ठीक है,
2: ठीक है।
0: तो पिताजी क्या बोलते हैं, इस घर में तो चींटियों की फौज है, फौज पूरी, जब जहां देखो वहां चींटियों की आर्मी है, चींटियों की सेना है। वो अपने घर के अंदर की बात बता रहे हैं। अच्छा, तो ये सब इसके बारे में ये कौन बोल रहा है कि मेरे घर में ये भी है, मेरे घर में तिलचट्टे भी है, मेरे घर में बर्रे भी है, ये कौन बोल रहा है बच्चों?
1: पिताजी बोल रहे हैं।
0: हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। और एक दिन क्या हुआ बच्चों, दो गौरैया सीधी उनके कमरे के अंदर, पिताजी के कमरे के अंदर आ गई और उनसे बिना पूछे, ये तो पक्षी है, उन्हें बोल सकते हैं क्या? बोलो, हमारी परमिशन पूछ सकते हैं क्या?
1: नहीं बोल सकते।
0: नहीं बोल सकते ना। तो पिताजी क्या बोल रहे हैं, देखो ये गौरैया सीधी मेरे घर के अंदर आई और इन्होंने मुझसे अनुमति भी नहीं मांगी, और बिना अनुमति के, बिना परमिशन के ये पूरे घर को ऑब्जर्व कर रही है। सो निरीक्षण मतलब देखना, टू ऑब्जर्व। ओके, निरीक्षण। तो कौन कर रहा है ये निरीक्षण बिना अनुमति के?
1: गौरैया।
0: गौरैया के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। एक दिन क्या हुआ बच्चों, उस मकान में, उस घर में जहाँ पिताजी हैं, माँ हैं और एक बेटा है, उस घर के अंदर कौन आई? दो गौरैया आई, और दो गौरैया बिना किसी परमिशन के आई, बिना किसी अनुमति के आई। ओके, उन्होंने पिताजी से अनुमति नहीं मांगी, इसलिए पिताजी को गुस्सा आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि इन दो गौरैयों ने मेरी कोई अनुमति नहीं मांगी और घर को आराम से देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है कि कहाँ रहें, क्या करें, है ना। तो मकान का निरीक्षण कर रही है, मतलब मकान को देख रही है। कौन देख रहा है मकान को?
1: गौरैया।
0: हाँ, कितनी है गौरैया?
1: दो
0: दो गौरैया। तो इस पाठ का नाम
1: दो गौरैया।
0: हाँ, दो गौरैया। कि वो मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जब बैठती हैं, तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ गई। ओके, सो वो मकान को बहुत सूक्ष्म तरीके से देख रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना घोंसला बनाना है, वो यहाँ पर रहने आ गई हैं। अब कौन रहने आ गई हैं अब यहाँ पर?
1: दो दो
0: दो गौरैया। इसीलिए वो बहुत ऑब्जर्व कर रही हैं, एक जगह से उड़ रही हैं, दूसरी जगह जा रही, देख रही हैं, भाल रही हैं कि कहाँ अपना घोंसला बनाए। इसीलिए कभी किसी खिड़की पर जाकर बैठ जाती हैं, कभी किसी खिड़की के ऊपर जा बैठती हैं। ओके, तो रोशनदान, रोशनदान का मतलब खिड़की, खिड़की का मतलब
1: विंडो।
0: हाँ, तो जिसको आप लोग विंडो बोलते हैं, उसी को हम हिंदी में बोलते हैं खिड़की, और उर्दू में बोलते हैं रोशनदान।
1: ठीक
0: तो भूलिएगा नहीं,
1: हाँ
0: ठीक है। लिखते समय आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ओके, लिखने के समय आप रोशनदान भी यूज कर सकते हैं, खिड़की भी यूज

0: कर सकते हैं। लिखने के समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, मगर आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि ये उर्दू का वर्ड है कि हिंदी का वर्ड है, ठीक है?
1: ठीक है।
0: ओके। पर दो दिन बाद हमने क्या देखा, कभी खिड़की पर फिर जैसे आई थी वैसे उड़ गई। पर दो दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। तो जैसे ही वो आई थी, उन्होंने, गौरैया ने देखा कि उनको कहाँ बैठना है, क्या करना है, उन्होंने देखा और देखकर उड़ गई। ओके। मगर दो दिन के बाद पिताजी ने क्या देखा, पिताजी ने देखा ऊपर जो फैन होता है ना, पंखा होता है ना, फैन तो अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, तो फैन को क्या बोलते हैं हिंदी में, पंखा। पंखे के बीच में जो गोला होता है, उस गोले के थोड़ा ऊपर थोड़ा स्पेस होता है ना, थोड़ी जगह होती है, उस जगह पर उन्होंने अपना बिस्तर बिछा लिया। बिस्तर मतलब
1: बेड।
0: ओके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। किसने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया, गौरैया ने। जैसे ही वो पहले आई, उन्होंने क्या किया गौरैया ने,
1: घर का पूरा जांच किया।
0: हाँ, घर का पूरा परीक्षण किया, घर को चेक किया। क्यों चेक कर रही थी वो घर को,
1: घोंसला बनाने के लिए।
0: घोंसला बनाने के लिए ना, कि कहाँ बनाए। और उसके बाद उन्होंने एट लास्ट कहाँ पर घोंसला बनाया,
1: पंखे के ऊपर।
0: हाँ, पंखे के ऊपर, पंखे के बीच में जो गोला होता है ना, उस गोले के ऊपर जो थोड़ी सी जगह होती है ना, वहां पर उन्होंने अपना बिस्तर बिछा लिया, ठीक है, और सामान भी ले आई, और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही। वो अपना सामान सब कुछ लेकर ले आ गई। अब जो घर बनाए तो सामान भी तो होगा ना भाई। अब हम अपना घर बनाते तो क्या हम अपने घर में सामान नहीं रखते हैं। वो लोग भी अपना सामान लेकर आई गौरैया, और उन्होंने क्या किया, अपना सामान वगैरह उन्होंने अच्छे से ठीक कर लिया और बैठ कर अच्छे से गाना गाने लगे। ओके। तो वो अपने आप को एंजॉय कर रही। तो वे कौन एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को,
1: दो गौरैया।
0: तो अच्छा बच्चो, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद बच्चो।
1: धन्यवाद अध्यापिका जी।
2: अभी तक आप सुन रहे थे हिंदी पाठ। अध्यापिका थे अनुपम रेशमी, छात्राएं थी तन्मया पिल्लई और मुस्कान जिशार। इसी के साथ आज का हिंदी पाठ यही समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आकाशवाणी त्रिशूर, कोंकणी गानम।

0: यावत् स्थगितम्। इतः प्राक् संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू उदघोषयत् यत् सर्वकारः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये सर्वविधां विचार विनिमयं कर्तुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय रिजिजू वर्यः सबलं आग्रहम् अकरोत् यत् सर्वकारः सर्वान् अपि पक्षान् समेत्य एकां उच्चस्तरीय चर्चाम् इच्छति।
1: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालयः सोमवासरे संसद भवनं प्रति गच्छत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे केन्द्रीय सर्वकारात् दिल्ली आरक्षक विभागाच्च प्रत्युत्तरं याचितवान्। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य च तथा न्यायाधीशस्य तेजस कारिया महोदयस्य न्यायपीठेन आरक्षक कार्याचरणात् सम्बद्धानि सर्वाणि प्रपत्राणि, सीसीटीवी चित्राणि च सुरक्षितानि स्थापयितुं निर्देशो प्रख्यापितः। अस्य प्रकरणस्य अग्रिमं श्रवणम् अस्मिन्नेव वर्षे सितंबर मासस्य एकादश दिनांके भविता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य फिलीपींस देशस्य राजधान्यां मनीलायां क्वाड विदेश मंत्रिणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका देशाः मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय सहैव आसियान संघस्य एकतायै स्वस्य अविचल समर्थनं पुनः प्रत्यपादयन्। उपवेशनावधौ तैः हिन्द प्रशांत क्षेत्रमधिकृत्य आसियान संघस्य दृष्टिकोणस्य समर्थनार्थं क्षेत्रीय समाह्वानानां अवसराणां चापि तैः समीक्षा कृता। चर्चायाः प्रमुख विषयेषु तावत् सामुद्रिक सुरक्षा, अन्ताराष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धिः, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक्यः, आपत् प्रतिक्रियाश्च समाविष्टाः आसन्। उपवेशनमतिरिच्य डॉक्टर जयशंकरः अमेरिका देशस्य विदेश मंत्रिणा मार्को रूबियो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां व्यदधात्। मंत्री प्रावोचत् यत् एषा वार्ता भारत अमेरिका देशयोः व्यापक वैश्विक सामरिक सहभागितायाः प्राथमिक विषयेषु व्यापार शुल्क ऊर्जा रक्षा सुरक्षा खनिज कृत्रिम बुद्धिमत्तादिषु केन्द्रिता आसीत्। असमराज्ये जलप्लावनस्थितिः साम्प्रतमपि अत्यन्तं संकटापन्ना वर्तते, यत्र राज्यस्य 16 मण्डलानि जलाप्लावेन प्रभावितानि सन्ति। कृत्स्नेहिराज्ये जलौघेन 21 जनाः पञ्चत्वे विलीनाः, येन अद्यावधि मृतकानामाहत्य संख्या 31 सम्प्राप्ता। आधिकारिक प्रतिवेदनानुगुणं 270+ ग्रामाः साम्प्रतमपि आप्लाविताः वर्तन्ते, येन अशेषस्य राज्यस्य 5 लक्षतोप्यधिकाः जनाः प्रभाविताः अभवन्। राज्यसर्वकारेण 170 आपदुद्धार शिविराणि तथा 200+ आपद्वितरण केन्द्राणि समुद्घाटितानि, यैः 12,000+ जनेभ्यः आश्रयः, 1,00,000+ जलाप्लावितेभ्यः च साहाय्यं प्रदीयते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्यां प्रचलद्भिः विरोध प्रदर्शनैः व्यथितः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः न्यगादीत् यत् केन्द्रीय सर्वकारः छात्राणां भावोद्गारान् आशंकाः च प्रति अतीव संवेदनशीलो वर्तते। सर्वकारः छात्रैः उत्थापितस्य प्रतिप्रश्नस्य श्रवणाय समाधानाय च पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्री सिंहः तीक्ष्णम् आक्षेपं व्यदधत्त यत् कतिपयजनाः स्वकीयान् संकुचित राजनैतिक स्वार्थान् साधयितुम् ऊर्जस्विनीं छात्रशक्तिं राजनैतिक कन्दुकत्वेन प्रयोक्तुं कुत्सितं प्रयासं कुर्वन्ति।
2: ये संसद का सत्र इस समय चल रहा है, सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक बहस करने की भी बात की है और कई बार अपनी बात को दोहराया भी है, मगर विपक्ष संसद में नहीं बल्कि सड़क पर मुद्दों का समाधान करने का, मैं मानता हूं, अनुचित प्रयास कर रहा है।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी

0: विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
1: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
2: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़

0: पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानसपतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बीरोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़क कर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।